0: శ్రోతలకి ఒక గమనిక. ఆకాశవాణి వార్తా విభాగం ఇప్పుడు హిందీ, మరాఠీ, డోంగ్రీ, సంస్కృతం భాషల్లో కూడా ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ వార్తా సేవలను అందిస్తోంది. గత ఏడాది ప్రారంభమైన ఈ సేవలు ఆంగ్ల భాషతో సహా ప్రస్తుతం 10 ప్రాంతీయ భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉర్దూ, ఒరియా, బెంగాలీ, కశ్మీరీ, అరుణాచలీ, పంజాబీ భాషల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ సేవలు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ సమాచారం పొందేందుకు ఆన్లైన్లో కానీ మొబైల్ ద్వారా కానీ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో అయితే www.newsonairnic.in ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్కు, మొబైల్ ద్వారా అయితే 7738299899 నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ చేసి వార్తా ఉచిత సేవలు పొందవచ్చు. గమనిక విన్నారు.
1: 102.2 మెగాహెర్ట్జ్ పై మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. ప్రకటించిన అంశం మరికొద్ది క్షణంలో.
2: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం, సమయం 8 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణంలో ముందుగా హిందీలోను అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
3: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మే విశాల్ శర్మ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी. राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम. सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया. मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान. और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी. हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी.
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं. 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी. इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है. साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है. फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं. नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं. सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है. दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाली का नाम तय करती है. समाचार कक्ष से जया भारती.
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी. इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा

0: कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा

0: 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य।

अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त कीमतों की होगी समीक्षा।

0: of 16. So soft tennis is something which the Indians could get a medal in the future.
1: जी, और अब थोड़ी सी यहाँ पर निराशाजनक खबर आपको दूंगी स्विमिंग की दुनिया से, बिकॉज धनुष सुरेश मिस्ड आउट ऑन द मेंस 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल, फिनिशिंग 22nd ओवरऑल विद द टाइम ऑफ 1:03.46, दैट लीव्स श्रीहरि नटराज एज इंडियाज ओनली स्विमर इन द फाइनल टुडे, विद द मेंस 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल स्टिल टू कम, एंड देर आर मेनी मोर as we say swimming events lined up for the day, but as we say the day has just started and we are hoping this is going to turn out to be one of the best days in the
2: meer intavarku 2026 aasia kridalu 20th sanchikaku sambandhinchina taaja samacharam vinnaru 102.2 megahertz pai meer vintunnaru aakashavani fm ippudu vindam aasia kridalu 2026 ఇరవయో సంచికకు సంబంధించి ప్రత్యేక కార్యక్రమం రోజువారీ ముఖ్యాంశాల క్యాప్సూల్ ఇప్పుడు వింటారు. వినే ముందుగా కార్యక్రమంలో కొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనలు విందాం.
3: ఎల్ఐసి మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉంటూ వచ్చింది. పరిచయం చేస్తున్న మై ఎల్ఐసి, ఎల్ఐసి సరికొత్త కస్టమర్ యాప్.
4: మీ పాలసీలు, పేమెంట్స్ పూర్తిగా టెన్షన్ ఫ్రీగా చూసుకునే ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్.
3: ఇన్స్టెంట్ ప్రీమియం పేమెంట్స్, 360 degree పాలసీ డీటెయిల్స్, క్విక్ యాక్సెస్ టు పాలసీ బెనిఫిట్స్, పాలసీ అప్డేట్స్, రివైవల్, పేపర్లెస్ ఈ-కేవైసి.
5: ఎల్ఐసి, ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా.
6: ముఖాన మొటిమల
7: ఎనభై సంవత్సరాలుగా మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేయోభిలాషి సైబాల్.
8: అండ్ హియర్ ఇస్ ది అప్డేట్ ఫర్ టుడే ఫర్ ద 20th ఆఫ్ సెప్టెంబర్, ది ఏషియన్ గేమ్స్ 2026.
9: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచి నగోయా.
10: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईची नागोया का खेल मैदान है, तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
11: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
10: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलरिवन रिमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल, सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा, सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
11: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो, लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा।
12: आईची नागोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
10: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया, लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
13: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्शा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्शा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गईं। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारिवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
14: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
10: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया। बता रही हैं अमीषा।
15: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लालरम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
10: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 के करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डेनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की, उन्होंने भी

0: बर्दाश्त नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में श्रीजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में श्रीजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी 5वें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला 5वें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एकतरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीषा।
1: 20वें एशियन गेम्स आईची नागोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजेय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
0: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहां जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेक बॉल की पहचान जरूर बन गई।
0: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल पांचवें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे।

0: हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में छठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
1: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
0: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही है कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
0: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। सॉफ्ट टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सु महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। MMA के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का

0: వార్తా ప్రసారం వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే కనకలతా. दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई. इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई. ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी. वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी.
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष

0: ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centres are operational in the country and the government aims to increase this number up to the primary health facility level. She informed that the country now provides pharmacovigilance data to the WHO patient safety database. The minister further highlighted that India has risen from the 100

0: 6 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: आपका स्वागत है एशियन गेम्स अपडेट्स ऑन आकाशवाणी। आपके साथ हैं साक्षी मानवाल और मैं अभिनव पुंछी। और लेटेस्ट खबरें हम आपको सुना रहे हैं बैडमिंटन के अरीना से, जहां लक्ष्य सेन इंडिया के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी है। बांग्लादेश के अजमान के खिलाफ 21-4, 21-12 पहला मैच जीता और दूसरे मैच में आयुष डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 21-4 पहला सेट उन्होंने जीता और दूसरी गेम में भी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। तो बैडमिंटन में आज इंडियन मेंस टीम ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी और हमारे साथ है साक्षी। एंड साक्षी, शूटिंग की खबरें से हमें प्लीज अपडेट करिए।
3: जी, और पहले तो अभिनव शुक्रिया फॉर स्टार्टिंग दिस सेशन। जो हम लाइव अपडेट्स का लेके आ रहे हैं खुशखबरी के साथ, विच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। अब शूटिंग की अगर हम बात करें तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट आज हुआ और वहीं मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट भी हुआ। तो चलिए पहले वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की बात कर लेते हैं। वहां पर रायजा ढिल्लो ने सिर्फ 21 अंक कलेक्ट करे थे अपने दूसरे राउंड से, लेकिन उनका जो एग्रीगेट स्कोर अंत में बना वो था 46 पॉइंट्स का और इसके साथ उन्होंने अपना पहला दिन आज समाप्त किया 9वें स्थान पर। वहीं

0: परिनाज धालेवाल ने अपना पहला दिन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर 43 पॉइंट्स के साथ 14th स्पॉट पर समाप्त किया। तो अगर देखें तो जो भारतीय महिलाएं थी उनका पहला दिन आज समाप्त हुआ टीम इवेंट में तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहा चाइना 143 अंकों के साथ, कजाकिस्तान आज दूसरे स्थान पर बना हुआ है 138 अंकों के साथ, और भारत की महिलाएं रही तीसरे स्थान पर 132 अंकों के साथ। अब अगर हम मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की भी बात कर लेते हैं तो वहां कुछ ज्यादा अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर नहीं आ रही हूं आज दोस्तों, क्योंकि भारतीय मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर अनंतजीत सिंह नरुका ने हाईएस्ट प्लेस इंडियन बने वो 21वें स्थान पर 47 अंकों के साथ। अब आप ये सोचिए, और दूसरी तरफ मेराज अहमद खान 26वें स्थान पर रहे और भवतेक सिंह गिल 27वें स्थान पर रहे। तो अगर ओवरऑल देखें तो मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर भारतीय टीम ने आज 6th स्पॉट पर समाप्त किया 136 अंकों के साथ। कतर रही 145 अंकों के साथ, जो भारत के से, अगर भारत से हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत से एक स्थान ऊपर है। तो ओवरऑल मेन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट में हमारे मेन शूटर्स का प्रदर्शन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि हमारा दिल खुश कर दे अभिनव।
1: ऑफ कोर्स, मगर दिल खुश तो करा है हमारी कबड्डी टीम ने, अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय द इंडियन मेंस कबड्डी टीम, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, एंड दे बीट जापान 49-24, कॉम्प्रिहेंसिव विन। और आईची नगोया एशियन गेम्स में ऐसे ही हमें प्रदर्शन चाहिए हमारे मेंस कबड्डी टीम से, और ऐसे ही प्रदर्शन हमें मिल रहे हैं हमारे विमेन्स हॉकी टीम से, जो साक्षी गोल स्कोरिंग स्प्री पे है।
0: जी हां जी, द बेस्ट न्यूज आर हॉकी टीम, वुमेन्स हॉकी टीम आज एक बार फिर से कमाल करते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ, जहां पर हमारी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने आज इंडोनेशिया को 17-1 से पराजित किया, अ कमांडिंग विक्ट्री जिसको हम बोलते हैं। और मत भूलिएगा जो पहला मुकाबला था भारतीय महिलाओं का हॉकी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी भारतीय महिलाओं ने 19-0 से उज्बेकिस्तान की महिलाओं को हराया था। एक नाम जो सबको हमेशा याद रहेगा और रहना भी चाहिए वो है दीपिका सहरावत का, जिन्होंने पहले मैच में, पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दोस्तों एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 गोल दागे थे भारत के लिए, सेटिंग अ हाई फॉर इंडिविजुअल गोल्स इन अ वुमेन्स हॉकी मैच। और आज भी उनका जो योगदान रहा है भारत की इस जीत में इंडोनेशिया के खिलाफ वो भी काबिले तारीफ रहा। उनके साथ कुछ और नाम जो हम सबको याद रखने चाहिए जिन्होंने आज भारत की इस जीत में योगदान दिया है, वो है रुतुजा पिसल, साक्षी राणा, सालिमा टेटे, नवनीत कौर, इशिका चौधरी, और भी काफी सारे नाम है जो हम आपके लिए लेकर आएंगे और लाते भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है अभिनव कि हमारे सारे श्रोताओं के चेहरों पर हमने जो एक छोटी सी हंसी छोड़ी है खुशी वाली, वो हंसी हम बरकरार रहने दें।
1: जी हाँ, क्योंकि आज हुआ है धमाकेदार प्रदर्शन हमारे शूटर्स का। मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल, रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन और पार्थ माने, और उसके बाद कमाल और धमाल दिखाया हमारे मेंस 10 मीटर इंडिविजुअल एयर राइफल में, जब रुद्रांश पाटिल को मिला ब्रॉन्ज और हिमांशु को मिला अपने एशियन गेम्स डेब्यू पे एक और मेडल, वो भी सिल्वर। एंड साक्षी, एमएमए की दुनिया में भी हमने कमाल दिखाया।
0: जी, हमने एमएमए की दुनिया में भी कमाल दिखाया, लेकिन कहेंगे ना कि अगर एमएमए की दुनिया में हमने कमाल दिखाया भी तो ऐसा कमाल दिखाया कि थोड़ा सा हो सकता है सारे फैंस के सारे
2: 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पे मेरे विंटनारो आकाशवाणी एफएम। मेरे इंतवरकु आसिया क्रीडल्लो 20 संचिक संबंधिंचिन ताजा समाचारं विन्नारु 102.2 మెగాహెర్ట్స్ పై మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం। క్షమించాలి, ఒక చిత్రగీతం విందాం। అన్నదమ్ముల చిత్రానికి ఘంటసాల పీసోసీలు ఆలపించిన గీసం దాశరథి

0: the very best for giving a brilliant performance and output today. Moving on to the world of table tennis also. Table tennis ko dinao ko bata de ki bhartiya mahilaon ne bhi aaj kamal kar diya kyunki unhone Pakistan ko 3-0 se parast karke women's team table tennis tie ko jeet kar apne naam kar liya. Shreeja Akula ne jeet hasil kari Fatima Khan ko hara kar 11-4 11-4 11-5 se aur finally Bharat ne group F ke winners ke taur par aage badhkar apne naam ko arjit kar आया क्वार्टर फाइनल्स की रेस में एक बहुत जरूरी नाम जो मैं यहां पर लेना चाहूंगी कहूं अहम नाम दोस्तों वो है सिंड्रेला दास का who was on a Asian Games debut today aur unhone Kulsoom Khan ko 11-6 11-7 11-5 se hara kar Bharat ko ek commanding position mein Pakistan ke khilaf la kar khada kiya tha aur isi buniyad par Bharat ko pehle 2-0 se ek advantage mil gayi thi Abhinav jiske baad humne dekha ki kis prakar se Shreeja Akula ne finally 3-0 se Pakistan ko hara kar ye tie apne naam karwa liya
1: aur jo women's team ne kara hai kya men's team यही करेंगे आज क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है आईची नगोया में एशियन गेम्स में ये ग्रुप एनकाउंटर है 3:30 बजे इंडिया और पाकिस्तान एक्शन में देखेंगे याद दिलाएं इंडियन मेंस टीम हारे थे ईरान के खिलाफ तो आज क्या इंडिया कमबैक करेगी
0: Well, hoping for the best, लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज और क्या-क्या इवेंट्स आप देख पाएंगे आज के दिन में पहले शुरुआत करेंगे थोड़ी ही देर में वुशु के साथ जिसमें वुमेन्स सैंडा के 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर रोशी बिना देवी भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दोपहर 2:30 बजे नजर आएंगी और वुशु के अंदर ही मेन सैंडा 56 किलोग्राम कैटेगरी में आर्यन भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आएंगे दोपहर 2:30 बजे से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पर
1: और आज कबड्डी में इंडियन मेंस टीम ने तो जापान को हराया 49-24 शानदार शुरुआत भारतीय मेंस कबड्डी टीम की मगर विमेंस कबड्डी टीम भी एक्शन में देखेंगी 4:15 बजे जब उनका मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ तो हम चाहेंगे कि आज कबड्डी में क्लीन स्वीप हो क्योंकि आज इंडिया का मेडल्स टैली तो शानदार रहा है एंड इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर इंडिया एज फार एज द मेडल्स आर कंसर्न
0: यस इंडीड एंड व्हेन वी से ऑफ मेडल्स शूटिंग की दुनिया को हम क्यों भूल रहे सबसे ज्यादा मेडल्स तो अभी तक उसी इवेंट के अंदर से हमारे पास आए हुए हैं 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जिसमें 2 सिल्वर कल हमारे शूटर्स ने अपने नाम किए थे और 2 सिल्वर आज हमारे शूटर्स ने अपने नाम किया और उसके साथ साथ 1 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत को दिलवाया कुल मिलाकर शूटिंग में अभी तक है 5 मेडल्स लेकिन आपको ये बता दें दोस्तों कि भारत की अंक तालिका में जो अभी स्टैंडिंग है वो 10वें स्थान पर तो सफर अभी काफी लंबा पड़ा हुआ है लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हमारे एथलीट्स एट द एंड ऑफ द डे अभिनव बहुत ही शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे इस एशियन गेम्स 2026 के अंदर
1: जी हाँ सारी अभी मगर निगाहें हैं श्रीहरि नटराज पे उनका कंपटीशन शुरू हो गया मेंस 50 मीटर बैक
2: 102.2 मेगाहर्ट्ज पे मीर विंटुनार आकाशवाणी एफएम ఇప్పుడు కొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనలు విందాం
3: ఎల్ఐసి మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉంటూ వచ్చింది పరిచయం చేస్తున్న మై ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి సరికొత్త కస్టమర్ యాప్
4: మీ పాలసీలు పేమెంట్స్ పూర్తిగా టెన్షన్ ఫ్రీగా చూసుకునే ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్
3: ఇన్స్టెంట్ ప్రీమియం పేమెంట్స్ 360 డిగ్రీ పాలసీ డీటెయిల్స్ క్విక్ యాక్సెస్ టు పాలసీ బెనిఫిట్స్ పాలసీ అప్డేట్స్ రివైవల్ పేపర్లెస్ ఈ కేవైసీ
5: ఎల్ఐసి ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా

0: और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज

0: चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य में राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
1: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल

0: किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం చిత్రగీతాలు. ఈనాటి చిత్రగీతాల కార్యక్రమంలో ముందుగా వినబోతున్నటువంటి పాట మా అన్నయ్య. ఈ చిత్రానికి హరిహరన్ పాడిన పాట, రచన సాయి శ్రీహర్ష.

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
1: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
1: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
2: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्यपुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
1: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
1: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमरीका बना। ये वही अमरीका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलम्बस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
2: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
3: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
4: माँ।
5: हाँ बेटा।
4: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
5: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
4: हाँ पर
5: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
4: पर माँ हमारे
5: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
4: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
5: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
4: लेकिन माँ सुनो ना।
5: अरे बेटा, मैंने कहा।
4: अरे सुनो माँ।
5: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
4: माँ

0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
2: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ, क्या सोच रहे हो?
3: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
2: कुछ कर सकते भाई, क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
3: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
2: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
3: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
2: बेटा,
3: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
2: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
3: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
2: लेकिन क्या बेटा?
3: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
2: अरे बेटा सुनो तो
3: माँ, एक लालटेन दे दो।
2: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
3: अरे माँ लालटेन दे दो।
2: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो।
4: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
0: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
1: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
0: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
3: माँ माँ माँ,
2: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
2: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
3: नहीं माँ, एक भी नहीं।
2: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
3: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
2: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
3: हाँ माँ,
2: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
0: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।

0: ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
1: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
0: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
1: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
0: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
1: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं।

0: निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
1: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
2: आखिर क्या चीज?
1: घड़ी, घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
0: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
2: हाँ भैया, आ तो रही है।
0: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
2: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है।
3: पेंडुलम?
2: वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे।
3: आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
0: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
2: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
0: मट्टू बोले,
1: हाँ हाँ जरूर।
0: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
1: देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
0: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
2: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
0: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
1: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
4: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
4: ध्यान देना,
0: रक्कास
4: नाचने वाला,
0: ताब
4: ताकत बर्दाश्त,
0: हिंसा
4: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे?
4: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी?
4: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
4: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
5: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: मेरे इंतवरकु एनसीईआरटी वारी प्रायोजित कार्यक्रम विन्नारु।
8: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రసార వ్యవస్థ,
9: దేశవ్యాప్తంగా 255 కేంద్రాలు.
8: 26 భాషల్లో నిరంతరాయంగా ప్రసారాలు.
9: మీడియం వేవ్, షార్ట్ వేవ్, ఎఫ్ఎం బ్యాండ్స్ తో
8: ఆకాశవాణి
9: 99% ప్రజలను చేరుకున్న ప్రియవాణి.
8: విభిన్న మనస్తత్వాలు, భిన్న సంస్కృతులు, పలు భాషలు, వేర్వేరు నమ్మకాలు, కోరికలు, అవసరాలు, అభిరుచులు, అందరిది ఒకటే వాణి, ఆకాశవాణి.
10: ఏక్ జమానే సే కహానీ హై సునా రహీ ఆకాశవాణి. ఫిర్ ఆయా ఎంటర్టైన్మెంట్ కా రెవల్యూషన్, జబ్ కోనే కోనే పహుంచా దూర్దర్శన్. కహానీ నహీ బదలీ, స్టైల్ గయా హై బదల్. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
11: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
7: वन आर टू पॉइंट टू मेगा हेट्स पे मीर विंटुनारु आकाशवाणी एफएम. मरकोदी सेपटलो आसिया क्रीडलु 2026 की संबंधी अपडेट्स विंटारू.

0: स्वागत है आपका अपडेट्स के लिए फॉर एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। मेरा नाम है अभिनव पुंछी, मेरे साथ है साक्षी मानवाल। और खुशखबरी आई है वुशु के अरीना से, क्योंकि इंडिया की रोशिबिना देवी ने जीत हासिल करी है। राउंड ऑफ 16 मैच में उन्होंने मोर्चिका खातून को हराया विन बाय पॉइंट डिफरेंस। और याद दिलाएं आप सबको कि रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगझो एशियन गेम्स 2022 में, और 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बस एक जीत की और जरूरत है रोशिबिना देवी को, और इंडिया को एक और ब्रॉन्ज मेडल गारंटीड है। और मेरे साथ है साक्षी।
1: जी अभिनव, थैंक यू सो मच। एंड गिवन द फैक्ट दैट आपने हमारे श्रोताओं को अभी एक खुशखबरी दी है, तो ये डेफिनेटली अ रीजन टू स्माइल है, बिकॉज अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आज सुबह की शुरुआत में नायमन वांगशू फिनिश्ड एट द 15th स्पॉट इन द एशियन गेम्स वुमेन्स चैंगकुआन फाइनल विद 9.573 पॉइंट्स इन अ 16 स्ट्रॉन्ग फील्ड। वहीं हांगकांग की हुई यू लिडिया शैम ने गोल्ड अपने नाम किया था 9.713 पॉइंट्स के साथ। तो जहां वुशु ने आज सुबह उतनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नहीं देखी भारत के एंगल से, लेकिन अब वहां पर हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। और उसी में आर्यन भी अब आमने सामने आने वाले हैं शहजादा सफी के साथ इन द मेंस 56 केजी राउंड ऑफ 16 एट 3:50 PM टुडे, यानी अगले 20 मिनट में आप ये मुकाबला भी देख सकेंगे। अभिनव
0: जी हाँ, और बात करें एक बड़ी राइवलरी, द आर्च राइवल्स इंडिया एंड पाकिस्तान आर क्लैशिंग राइट नाउ इन द टेबल टेनिस मेंस टीम इवेंट। इंडिया और पाकिस्तान का ये ग्रुप एफ का मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। हरमीत देसाई स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स मोहम्मद खान के अगेंस्ट। इंडिया की टीम में सत्या गणेशेखरन, मानव ठक्कर, मनुष्या और पायस जैन है। याद दिलाएं इंडिया ने इंडोनेशिया को तो 3-0 हराया, मगर शॉक हुआ जब इंडिया ईरान से 3-0 हारी। और आज इंडिया को पाकिस्तान को हराने की जरूरत है अगले फेज में जाने की। तो क्या इंडियन टीम वो कर पाएगी जो इंडियन वुमेन्स टीम कर चुकी है, जिन्होंने पाकिस्तान को अर्लियर इन द डे हराया था?
1: जी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए आज, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो हमारे चांसेस ऑफ स्टेइंग अलाइव इन द एशियन गेम्स 2026 आल्सो स्टे अलाइव। लेकिन आप स्विमिंग की ओर भी एक रुख कर लेते हैं हमारे प्यारे श्रोताओं, और आपको बताती हूँ कि इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड डे फॉर आर इंडियन स्विमर्स, बिकॉज भारत की तरफ से श्रीहरि नटराज ने 10th स्पॉट पर फिनिश किया इन द मेन्स 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल एट द एशियन गेम्स 2026, क्लॉकिंग 25.52 सेकेंड्स इन द 10th स्विमर मेडल रेस। और दूसरी तरफ ये भी बता दो आप सबको कि बाकी भी जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका तो आज इससे भी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, चाहे हम बात करें ऋषभ दास, आकाश माने, हीर जितेश शाह, या फिर धनुष सुरेश की, या फिर मेंस के जो 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले का मुकाबला भी जो होता है, हीट जो होता है, उसमें भी भारतीय स्विमिंग टीम साजन प्रकाश, अनीश सुनील, कुमार गावड़ा, वेदांत माधवन और दक्षिण शशि कुमार, ये सब क्वालिफाई करने से, फाइनल्स में क्वालिफाई करने से रह गए। तो ओवरऑल नॉट एट ऑल अ गुड डे फॉर इंडियन स्विमर्स ओवर देयर। अभिनव
0: जी हाँ, स्विमिंग में तो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मगर कबड्डी में तो इंडिया ने धमाका मचा दिया, क्योंकि जापान के

0: खिलाफ इंडिया ने जीत हासिल करी 49-24। जापान की स्टार्ट बहुत अच्छी थी, मगर हमारी इंडियन टीम जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके आगे तो कोई बड़ा नहीं। इंडिया ने एक फैंटास्टिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई, 49-24 से जीत हासिल करी। और अब होने वाला है मुकाबला हमारी विमेन्स टीम का, क्योंकि एट 4:15 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेन्स ग्रुप ए का एक धमाकेदार इंकाउंटर होने वाला है साक्षी।
1: यस इंडीड, उसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी और वो आज इंडिया के एंगल से भी आखिरी मुकाबला होगा भारतीय रिप्रेजेंटेशन का एशियन गेम 2026 के अंदर। लेकिन अगर थोड़ा सा आज पीछे जाए और बात करें कि आज ऐसे कौन से और पल आए जहां पर हम सबके चेहरों पर थोड़ी सी हंसी आ सकी, वो था बैडमिंटन की दुनिया से, जहां पर हमारे इंडियन शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने भारत को जीत हासिल कराई, बांग्लादेश को 3-0 से हरा कर। और इसके साथ ही वो क्वार्टर फाइनल्स में भी प्रवेश कर गए, जहां पर अब उनका मुकाबला होगा जापान के साथ, जो कि बिल्कुल भी आसान मुकाबला नहीं होने वाला है अभिनव भारतीयों के लिए।
0: जी हाँ, और हमारा होने वाला है बहुत ज्यादा बड़े मुकाबले। आप स्टे ट्यून रहिए एशियन गेम्स की कवरेज सिर्फ आकाशवाणी पे अपडेट के साथ। हम वापस आएंगे 4:30 पे। इंडिया भी मेडल टैली पे 12th पोजीशन में, होपफुली ये टैली बढ़ते रहे।
1: होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑफ ईयर, बट एट द एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इंडिया एंजॉयड अ सक्सेसफुल डे एट द एशियन गेम्स टुडे, हैविंग सिक्योर्ड अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स सो फार। शूटिंग प्रोवाइडेड दो 3 ऑफ दोज मेडल्स, ऑफकोर्स where we are talking of silver, we had 4 medals, 4 silvers and 1 bronze, but overall a good day so far for the Indians.
2: 102.2 MHz పై మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం టీన్ టైమ్. ఈనాటి టీన్ టైమ్ కార్యక్రమంలో చిత్రగీతాలు వినండి. సో ముందుగా వినబోతున్నటువంటి పాట లెజెండ్. ఈ చిత్రానికి విజయ్ దేవదాస్ చిత్ర ఆలపించిన పాట, రచన రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి.

0: మీరు విన్న ఈ పాటతో యువలయ కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. 102.2 MHz మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. ఆసియా క్రీడలు 2026 అప్డేట్స్ వింటారు.
1: అబ్ సమయ హై ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 కి అప్డేట్ కా.
2: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
3: Hello and a very warm welcome to the live coverage of the ongoing Asian Games 2026 that we are bringing to you every hour on Akashvani. Dosto, main hu Sakshi Manwal aur mere saath yahan par maujood hai mere dear friend and of course co-host for the day Abhinav Punchi. And very quickly now moving on, sabse pehla sport jisko hum aaj cover karne wale hain, aapko batane wale hain is waqt ki pichle 1 ghante mein kya hua usme tha, wo hai wushu. More good news coming in for India in wushu. Aryan defeated Afghanistan's Shehzada Safi 2-0 in the men's 56 kg round of 16 to book his place in the quarterfinals. Ji haan, quarterfinals mein hum pravesh kar chuke hain. Wahi kuch pal pehle hi Bharat ki Roshibeena Devi had also advanced to the women's 60 kg quarterfinals, beating Bangladesh most khatoon by win by the point difference. Yani iska matlab ye hua Abhinav ki wushu ke quarterfinals mein Bharat ne apni jagah bana liye, chahe wo mahilaon ka ho chahe wo hamare aadmiyon ka ho, aur wo quarterfinals hone wale hain kal.
4: एग्जैक्टली राइट साक्षी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वुशु में अगर आप सेमीफाइनल्स में प्रवेश करते हैं तो गारंटीड ब्रॉन्ज है, तो बस एक जीत से दूर है हम दो ब्रॉन्ज मेडल्स गारंटी करने के लिए. बट हमारा तो मिशन गोल्ड का है, और इसलिए आज हमारी टेबल टेनिस की मेंस टीम ने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को 3-0 हराया. शानदार प्रदर्शन हमारी मेंस टीम का. याद दिलाएं, मेंस टेबल टेनिस टीम प्रेशर में थी क्योंकि ईरान से वो हारे थे 3-0, तो अगर क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश करना था तो आज पाकिस्तान को हराना बहुत ही महत्वपूर्ण था. तो हरमीत देसाई ने शुरुआत करी, मोहम्मद खान को हराया 11-4, 11-3, 11-5. फिर सत्यन गणेशेखर ने हराया अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9. और प्रयास जैन ने मोहम्मद खान को हराया 11-2, 11-5, 11-7. इस जीत के साथ अब इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम जाती है क्वार्टर फाइनल्स.
3: जी, और कबड्डी की ओर भी अब रुख कर लेते हैं. महिला कबड्डी का मुकाबला आज होने वाला है. वैसे तो इसको शाम को 4:15 शुरू होना था, लेकिन कुछ ही क्षणों में अब ये मुकाबला शुरू होता हुआ आप लोग देख सकेंगे. ये मुकाबला होगा भारत और बांग्लादेश की महिला कबड्डी के बीच में, जिसमें आपको ये भी बता दें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम जो थी पिछले मुकाबले में ईरान से बुरी तरह से हारी थी. जी हाँ, 3-0 से ईरान ने भारत को हराया था. इसलिए आज भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उनके मनोबल के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए वो इस मुकाबले को जीते और कॉन्फिडेंटली और कमांडिंग तरीके से जीते. आपको यह भी बता दें कि भारत का जो ग्रुप है उसके अंदर भारत है, ईरान है, जापान है, बांग्लादेश है. ईरान से हम हार चुके हैं, अभी बांग्लादेश के साथ अभिनव मुकाबला है, और अगर आज भी नहीं जीते तो करो या मरो वाली कहानी है उसके बाद जापान के साथ. और रास्ता मुश्किल नहीं होता है, सफर और कठिन ही हो जाएगा भारतीय महिलाओं के लिए.
4: जी हाँ, प्रेशर इज ऑन द इंडियन वुमेन, मगर जैसे हमारा इंडियन कंटिंजेंट एशियन गेम्स में दिखा रहा है आईची नगोया में कि इंस्पायर कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि आज इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने अपना जो इंकाउंटर था जापान के खिलाफ जीता 49-24 से. शुरुआत थोड़ी स्लो थी बट उसके बाद क्या पेस पकड़ी, और शानदार तालमेल था हमारे अटैकर्स और डिफेंडर्स का, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद हमारी टीम ने जीते 49-24. और आज बस ये अच्छी न्यूज नहीं थी साक्षी, मेडल्स की भी तो आज बरसात हुई है शूटिंग से.
3: ऑफकोर्स शूटिंग से आज मेडल्स की बरसात हुई है, बिकॉज आपको बता दें कि शूटिंग में आज हिमांशु ढिल्लो हमारे लिए सिल्वर लेकर आए, वहीं रुद्राक्ष पाटिल हमारे लिए ब्रॉन्ज लेकर आए मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल्स में. और क्योंकि हम शूटिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तक अगर मेडल तालिका की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स जो किसी गेम में आए हैं वो है शूटिंग के अंदर ही. जी हाँ, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल की वजह से भारत की अभी जो मेडल टैली है उसमें कुल मिलाकर 6 मेडल्स हैं, जिसमें से 5 तो शूटिंग में आए, और छठा मेडल जो आया है वो आया है सुचिका तारियाल की वजह से. जी हाँ, इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दिस गर्ल वेंट ऑन टू ब्रिंग लॉरल्स फॉर इंडिया बाय विनिंग द ब्रॉन्ज. एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट अंत में एक इमोशनल मोमेंट उसके लिए हो गया था, उनके लिए हो गया था, बिकॉज ऑफ हाउ that medal was granted or the decision was made. Yet, there is no taking away the fact that she made India stand tall with pride, stand tall with, of course, confidence and happiness, and made every Indian also happy because MMA ke andar unhone Bharat ko bronze medal dilaya. To dosto, iske saath aapko bata dein ki India's medal tally receives a strong boost across multiple disciplines, with the athletes delivering notable performances throughout the day and setting the tone for the rest of the games. Aur yahan se up, क्विकली आपको बताते थे भारत की स्टैंडिंग है 12वें स्थान पर, जिसमें है 6 मेडल्स, ऑफ कोर्स 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज. होपिंग दैट इंडिया टेंड्स टू परफॉर्म बेटर इन द कमिंग डेज. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन राइट नाउ. एक घंटे बाद दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात.
0: 102.2 MHz पर మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి FM. ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
5: ఆకాశవాణి హిందీ పాఠం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో బదలే అప్నీ సోచ్, 9వ తరగతికి హిందీ పాఠం వింటారు. ఉపాధ్యాయులు శ్రీ వలేటి వెంకటేశ్వర్లు, విద్యార్థిని కె సౌజన్య. వినండి 9వ తరగతికి హిందీ పాఠం బదలే అప్నీ సోచ్.
6: నమస్తే అధ్యాపక్ జీ.
7: ఆవో, ఆశీర్వాద్, బైఠో.
6: అధ్యాపక్ జీ, आज आप मुझे क्या पढ़ाएंगे?
7: नवीं कक्षा में बदले अपनी सोच नामक पाठ है ना, उसके बारे में जान लेंगे. पहले मैं एक बार पाठ पढ़ूंगा, सावधानी से सुनो. संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर दिया. किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था. उस लड़की का नाम युवरत्ना श्रीवास्तव है. भारत को इस लाडली पर गर्व है. सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युवरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए कहा, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं. हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता. प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. क्या हमें स्वच्छ और स्वस्थ रह दिया था? और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो.
6: तेलुगु में भावार्थ बताइए अध्यापक जी.
7: ऐक्य राज्य समिति लो मोदटिसारि ఒక బాలిక ఉపన్యసించి మన అందర్ని ఆలోచింపజేసింది. ఆమె అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబులు లేవు. ఆమె భారతదేశానికే గర్వకారణం. సెప్టెంబర్ 2009 ఆమె ఉపన్యసిస్తూ ఇలా అంది, హిమాలయాలు కరిగిపోతూ ఉన్నాయి, ధ్రువ ప్రాంతపు ఎరుగుబంట్లు సరిపోతూ ఉన్నాయి, ప్రతి 5 ఇద్దరికి త్రాగుటకు మంచినీరు లేదు, ప్రశాంత మహాసాగరంలో నీటి శాతం పెరుగుతూ ఉంది, మన పూర్వీకుడు మనకు స్వచ్ఛమైన ఆరోగ్యవంతమైన గ్రహ సంపదను ఇచ్చారు, మన భావితరాలకు కలుషితమైన మలినమైన భూమి ఇస్తున్నామా? ఇలా చేయటం సబబేనా? ఆలోచించండి.
6: శబ్దార్థ బతాయే అధ్యాపక్ జీ.
7: లికో సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ ఐక్యరాజ్య సమితి.
6: సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ ఐక్యరాజ్య సమితి.
7: భాషన్ ఉపన్యాసము.
6: భాషన్ ఉపన్యాసము.
7: ధ్రువీయ భాలు ఉత్తర ధ్రువపు ఎరుగుబంటి.

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना सांझ के शो सिटी लाइट्स में हर रोज शाम 5 बजे।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषधि सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कथावाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते इति वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संसूचितवान्। केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूचीं मान्यतां ददति इत्येतत् भारतस्य स्वावलम्बनस्य महत्वपूर्णा यात्रा प्रदर्शयति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय औषधि सूच्याः सप्तम संस्करणं प्रकाशितवती। भाजपेति दलेन उक्तं यत् कांग्रेस दलं साम्यवाद विचारधारया गभीरतया प्रभावितः अस्ति। सहैव पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तस्य वक्तव्यस्य निन्दा कृता। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय सप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमंडलस्य नेतृत्वं करिष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं यूनाइटेड रसिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति। अपि च जापान देशस्य इचिनोमिया नगरपालिका व्यायामशालायां अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्राग उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य 100% निर्यातः शुल्क मुक्त प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। असौ उक्तवान् यत् एषा रणनीतिक सहमतिः उभयोः देशयोः मध्ये सहकारं अधिकं सुदृढीकर्तुं विद्यमानानां प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। अपि च आगामी 4-5 वर्षेषु वस्तूनां सेवासु च द्विपक्षीय व्यापारस्य मूल्यं प्रायः 35,000 कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धयितुं लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः मुक्त व्यापार सन्धेः प्रवर्तनेन एतत् लक्ष्यं सुदृढार्थिक परिणामेषु परिवर्तितं भविष्यति।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पिभ्यः तथा हस्ततन्तुशिल्पकारेभ्यः च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सः सूचितवान् यत् न्यूजीलैंड देशेन अस्य सन्धेः अन्तर्गतं भारतदेशे 2,00,000 कोटिरूप्यकाणां प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशाय प्रतिबद्धता प्रदर्शितास्ति।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों किसानों निर्यातकों और MSMEs पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: Meet India's scale and growing demand.
0: अयं संधे भारतीय निर्यातेभ्यः वस्त्र परिधानयोः औषधीनां कृषिजन्य वस्तूनां प्रसंस्कृत खाद्यपदार्थानां चादिषु क्षेत्रेषु नूतनान् अवसरान् उद्घाटयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।

0: वार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् औषधि सुरक्षा निरीक्षणस्य क्षेत्रे भारतस्य वर्षेभ्यः यात्रा स्वावलम्बनस्य महत्वपूर्णं उदाहरणम् अस्ति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय औषधि सूच्याः सप्तम संस्करणस्य प्रकाशन समये एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवती। मन्त्रिणा उक्तं यत् सम्प्रति देशे 11,000+ प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया निरीक्षण केन्द्राणि कार्यं कुर्वन्ति। प्रशासनस्य लक्ष्यं च एतां संख्यां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रस्तरं पर्यन्तं वर्धयितुमस्ति। सा एतदपि उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूचीं मान्यतां ददति तथा स्वकीयेषु दत्तांशेषु तां समावेशयन्ति। भारतं सम्प्रति विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य रुग्ण सुरक्षा दत्तांश भण्डाराय औषधि सुरक्षा सम्बन्धान् दत्तांशान् प्रददाति। मन्त्रिणा संसूचितं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य स्थानं 14,000+ वर्षे 23,000+ आसीत्, यत् स्थानं 25,000+ वर्षे अभिवर्ध्य 8वं जातम्।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तं वक्तव्यमालक्ष्य भाजपेति दलेन अद्य कांग्रेस दलस्य निन्दा कृता। दलस्य मुख्यालये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् अंसारी वर्यः 1,29,000+ वर्षे लिखितस्य पुस्तकस्य उद्धारणं दत्तवान्, यस्मिन् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य मतानुसारं हिन्दुराष्ट्रवादः साम्यवादस्य अपेक्षया बृहत्तरा विभीषिका आसीदिति। श्री त्रिवेदी वर्यः आरोपितवान् यत् अद्य कांग्रेस दलं वाममतानुपथी गतम्, साम्यवाद विचारधारया गभीरतया प्रभावितः च अस्ति। सः अग्रे अवदत् यत् पूर्व उपराष्ट्रपतेः वक्तव्यानि कांग्रेस दलस्य मनोवृत्तिं प्रतिबिम्बयन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय सप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमंडलस्य नेतृत्वं करिष्यति। विदेशमंत्री अस्य मासस्य 26वें दिनांके संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें उच्चस्तरीय सत्रं संबोधयिष्यति। स्वयात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर विविधेषु बहुपक्षीयेषु द्विपक्षीयेषु च उपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं युनाइटेड रशिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति। केन्द्रीय निर्वाचनायोगेन प्रकाशित प्रारम्भिक परिणामानुसारेण अनेन दलेन प्रायः 15.75% मतानि प्राप्तानि, यदा तु मतदान प्रतिशतम् आहत्य 66.65% आसीत्। अन्तिमपरिणामः सितम्बर मासस्य 25वें दिनांके यावत् आगमिष्यति इति सम्भाव्यते। पूर्वस्मिन् निर्वाचने युनाइटेड रशिया दलेन 24,300+ विजितानि आसन्। युक्रेन देशेन सह प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तथा कीव पक्षतः रात्रौ कृतस्य बृहद् ड्रोन आक्रमणस्य मध्ये एतद् निर्वाचनम् अभवत्। रूस देशस्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अस्मिन् आक्रमणे 19,000+ ड्रोन विमानाः सम्मिलिताः आसन्। आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 2 जनयोः मृत्युः अभवत्, अथ च एकस्य तैलशोधनालयस्य क्षतिः अभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैकल तेलंगाना चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। जापान देशस्य इची नोमिया नगरपालिका व्यायामशालायाम् अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: పర్సనల్ లోన్ ఆఫర్
4: మళ్ళీనా, దీన్ని బ్లాక్ చేస్తున్నా.
3: ఫ్రీ ట్రిప్ టు దుబాయ్
4: దీన్ని కూడా బ్లాక్ చేస్తున్నా. ఇంకా ఎన్ని నంబర్స్ అని ఇలా బ్లాక్ చేయాలరా?
5: నీ ఫోన్ లో జస్ట్ నంబర్స్ బ్లాక్ చేస్తే స్పామ్ ఆగదు, ప్రతిసారి కొత్త నెంబర్ నుండి కాల్ చేస్తూనే ఉంటారు.
4: మరి ఏం చేయాలి?
5: ఆల్ ఆన్సర్ చేసి వెంటనే ట్రై డిఎన్డి యాప్ లో రిపోర్ట్ చేయి. బ్యాంకింగ్, ట్రావెల్, ఇన్సూరెన్స్ ఇలా కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేయి. ఇదంతా చేయడానికి జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ పడుతుందంతే.
4: దీని వల్ల అందరికీ స్పామ్ తగ్గుతుందా?
5: అవును, రిపోర్ట్స్ వెళ్ళిన వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుంటారు. జస్ట్ బ్లాక్ చేయడం కాదు, రిపోర్ట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ట్రై డిఎన్డి యాప్ ప్లేస్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుండి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని రిపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి.
6: India obviously went on to defeat Bangladesh 42-21. Before the first half, keh sakte hain ki first half mein भारत के पास जो लीड थी वो थी 21-10 की बांग्लादेश के ऊपर. और फर्स्ट हाफ समाप्त होने के बाद बांग्लादेश बिल्कुल भी वापसी नहीं कर पाया, ना कन्विंसिंग या कॉन्फिडेंट मैनर, क्योंकि भारतीय महिलाओं का दबदबा उनके ऊपर बरकरार रहा. फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाने के बाद भी सेकेंड हाफ में हमने देखा कि भारत ने उस मुकाबले को भी अपने नाम कर लिया था 21-11 से. और अंत में हम कह सकते हैं जो टोटल पॉइंट्स भारत के पास आए वो थे 42 अंक, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास सिर्फ 21 अंक थे. यानी 42-21 से भारतीय महिलाओं की कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को दे दी शिकस्त. और डिपेंडिंग चैंपियंस होने का जो सरताज हमारे सर के ऊपर है इस वक्त, वो हमने अभी भी बरकरार रखा है अभिनव.
7: जी हाँ, कामयाबी हमें मिली कबड्डी में और कामयाबी भी हमें मिली है टेबल टेनिस के कोर्ट में, क्योंकि इंडिया ने अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को हराया मेंस एंड विमेंस टेबल टेनिस टीम इवेंट में. और इंडियन मेंस टीम को यह जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि याद दिलाए इंडियन मेंस टीम 3-0 हारी थी ईरान से, तो उनको आज जीतना ही था, ये पाकिस्तान को हराना ही था. क्योंकि पाकिस्तान को 3-0 आज हराने के बाद इंडियन मेंस टीम ने प्रवेश करा है प्री क्वार्टर फाइनल्स में. अभी इंडियन मेंस टीम के प्री क्वार्टर फाइनल के ओपोनेंट हम आपको अपडेट में बताएंगे अपने नेक्स्ट अपडेट आकाशवाणी में. मगर इंडियन विमेंस टीम ने भी साक्षी कमाल दिखाया आज.
6: ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अगर महिलाओं के टेबल टेनिस के मुकाबले की बात करें तो वहां पर भारतीय महिलाओं ने आज पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी, जिसमें श्रीजा अकुला ने आज फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से स्ट्रेट गेम्स में हराकर भारत को ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आज उनका ये सफर यहां पर लाके खड़ा किया. और उसके साथ ही साथ भारत को आगे भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में एडवांस करा दिया. एक बहुत अहम नाम जिसको लेना हमें नहीं भूलना चाहिए वो है सिंड्रेला दास, जिनका ये एशियन गेम्स का डेब्यू था या कहना चाहिए है इस वर्ष. और उन्होंने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हरा कर भारत को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, कमांडिंग और श्योर शॉट पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत को 2-0 की बढ़त दिलवा दी थी पाकिस्तान के ऊपर. और इसके बाद सिर्फ श्रीजा कुला को एक नेम से गेम खेलना था, जहां पर उन्होंने फिर से फातिमा खान जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी उनको हराया. और 3-0 से भारत ने पाकिस्तान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली, जहां उनका अब सामना होगा थाईलैंड से कल. और अपने दोस्तों आपको ये भी बता दें हम कि अगर भारत कल थाईलैंड को हरा देता है तो अभिनव भारत का अगला मुकाबला होगा नॉर्थ कोरिया के साथ, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, ये तो हम सबको पता है.
7: जी हाँ, इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट, मगर क्वार्टर फाइनल के पहले इंडिया को थाईलैंड को हराना ही पड़ेगा वो प्री क्वार्टर फाइनल मैच में. और हमें पता है दैट ऑल आर लिसनर्स वाज बी थिंकिंग वेयर इज दिस गोल्ड मेडल कमिंग फ्रॉम. अभी तक इंडिया के पास मेडल्स टैली में इंडिया 12th पोजीशन में, शूटिंग से सिल्वर मेडल आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स भी आए हैं हमारे पास, मगर गोल्ड कल आ सकता है. जी हाँ, गोल्ड का अकाउंट हमारा खुल सकता है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका 10:30 AM क्रिकेट का मैच होने वाला है. और ये रिपीट है एशिया कप फाइनल का, जहां हमें याद है इंडिया ने वो एशिया कप ट्रॉफी जीती थी, श्रीलंका से रिवेंज लिया था. और साक्षी, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गोल्ड टुमारो?
6: एनी डे एनी टाइम. गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, वो भी हमारे भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो हमारे एथलीट्स हो या प्लेयर्स हो, बट इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड. एंड एनी पर्सन हु लव्स क्रिकेट, हु लव्स स्पोर्ट्स इन जनरल, विल ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर देयर प्लेयर्स हु वर्क डे एंड नाइट सो हार्ड टू गेट आर कंट्री दैट कवेटेड गोल्ड मेडल. और इसके साथ ही दोस्तों, इस वक्त तो फिलहाल अपडेट्स का सिलसिला यहां पर आकर समाप्त तो होता है, लेकिन हम आपसे एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे जुड़ेंगे, जहां पर आज के दिन का आखिरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसा रहा ओवरऑल भारत के लिए आज का दिन एशियन गेम्स में.
8: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
9: अभी आप एशियन गेम्स 2026
10: 102.2 MHz पे मीर विंटुन्नारु आकाशवाणी FM.

0: कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो
1: जी
0: अपने काम में और ज्यादा उत्साह से लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है
1: जी
0: और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
1: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन की बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा
2: बिल्कुल,
1: आपको?
2: देखिए इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है।
1: जी
2: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है।

0: जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था, आज जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है, ऐसे कितने प्रोडक्ट जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, सेहोर का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है तो, और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है, इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके, तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है, आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है, आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है, तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रही है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, लोगों का पद्म, सुरेश जी, पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था, यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
0: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
1: जी,
0: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
1: जी,
0: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति है उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको मान्यता देना, उनका जाति, उनका मजहब, उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी,
0: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है, और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है।
2: 102.2 MHz पे मीर विंटुनारु आकाशवाणी FM चित्र गीतालु। सो ईनाडु चित्र गीतालो मुंदुगा विनबोतुन्नटुवंटि पाट कंचेई चित्रानिकि अभय जोधपुरकर श्रेया घोषाल आलपिंचिन पाट, संगीतं चिरंतन भट्ट, रचना सिरिवेन्नेल सीताराम शास्त्री।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड

0: के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
4: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा

0: सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा

0: की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India-New Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October.

ज्वार और चावल के हरे भरे खेत लहलहाते दिखाई पड़ते हैं। तिलहन और दलहन की सभी किस्मों की खेती इस धरती पर खूब होती है। गन्ना, चाय, काफी और जूट तो इतना पैदा होता है कि प्रतिवर्ष बहुत बड़ी तादाद में अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। भारत की वनस्पति भी बहुत समृद्ध है। आम, केला, पपीता, संतरा, नींबू, अमरूद, अनार आदि अनेक फलों से वृक्ष इस धरती पर खूब उगते हैं, जिनसे हम सरस, मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल प्राप्त करते हैं। अंगूर, बेर आदि फलों की बेलें और झाड़ियाँ हमारी इस भूमि पर उगते हैं। इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों से खेत लहलहाते रहते हैं। भूमि को वसुधा और धरा के नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्ण एवं अन्य धातुओं को धारण करने वाली। भारत में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, अब्रक और कोयले का अथाह भंडार है। विभिन्न क्षेत्रों में इन धातुओं की खाने हैं, जिनसे हम ये धातु प्राप्त करते हैं। हीरा, नीलम और पुखराज आदि रत्न हमारी भूमि के ही गर्भ में छिपे हैं। खनिज तेल के विषय में पहले हमारी जानकारी नहीं थी, किंतु भूगर्भ की खोज से हमें भारत भूमि में खनिज तेल के भी अथाह भंडार मिल गए हैं। पानी जीवन, विकास और समृद्धि का आधार माना जाता है। भारत की भूमि जल स्रोतों के मामले में पूर्ण समृद्ध है। हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा, यमुना, सिंध और ब्रह्मपुत्र आदि महानदियां अपनी अनेक सहायक नदियों के साथ देश के उत्तरांचल में बहुत बड़े भूभाग को सदा सर्वदा हरा भरा बनाए रखती है। इस प्रकार सोना उगलने वाली भूमि आज प्रदूषण के कारण बहुत बड़ी तादाद में बिगड़ती जा रही है। अतः हम सब धरती को बचाने के लिए प्रदूषणों का कारण जान लेंगे। पर्यावरण का अर्थ है प्राकृतिक वातावरण। वातावरण समस्त जीव कोटि का प्राणाधार है। प्रत्येक प्राणी के लिए जलवायु तथा आहार की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हमें प्रकृति इस धरती से मिलती है। बढ़ती हुई जनसंख्या और विज्ञान की उन्नति के कारण सोना उगलने वाली धरती बिगड़ती जा रही है। पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। पशु पक्षी और हम सब मनुष्य हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड इसी रूप में पर्यावरण में फैलता है। इससे हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है। आजकल हमारे आसपास बड़े बड़े कारखाने धुआं उगलते हैं। कल कारखानों से लगातार कूड़ा कचरा निकल रहा है, जो नदियों या जलाशयों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस कूड़े कचरे में कई तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो जल को दूषित करते हैं। नदी में यदि एक स्थान का जल दूषित हो जाता है तो पूरा वातावरण और नदी के आसपास की धरती जहरीली बन जाती है। आज का युग विज्ञान का युग है। कारखानों की संख्या बढ़ रही है। इन कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा रासायनिक व्यर्थ पदार्थ हवा में मिलकर पेड़ पौधों की हरापन को हरा रहा है। इससे धरती पर इसका तीव्र प्रभाव दिखाई पड़ रही है। रेलगाड़ियां, जलयान, वायुयान लगातार धुआं

0: और शोर मचाने से इसका असर इस धरती पर पड़कर भूकंप जैसे प्रकोप का शिकार बनते जा रहे हैं। आज अनेक प्रकार के यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनके द्वारा जो ध्वनि और धरती पर दबाव के कारण भी धरती का हाल बिगड़ता जा रहा है। फिलहाल धरती की जो स्थिति है उससे धरती को बचाने के लिए हमें यह करनी चाहिए, हम धरती पर गंदगी ना फैलाएं, फैली हुई गंदगी को साफ करने में सहयोग दें, अपने आसपास के नालियों को साफ रखें, कूड़ा कचरा जहां तहां ना फेंकें और ना नदी नालों में बहाएं, खुले प्रदेशों में मलमूत्र विसर्जित ना करें, जंगलों के वृक्ष ना काटे, युद्धों में जिन विषैले बमों का विस्फोट किया जाता है उससे सृष्टि के सर्वनाश होने का खतरा है। हमारे प्रयास यह होना चाहिए कि प्रकृति का भंडार सदा भरा रहे। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, पर्यावरण की रक्षा का दायित्व हम पर है, इसलिए हम ये प्रण लेना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा बनाएं, वाहनों का धुआं कम करें, विषैले पदार्थ नदियों व नालों में ना बहावे, भूमि हवा और जल को शुद्ध रखें। यह धरती एक ऐसी दुधारू गाय है जिसका दोहन करने पर यहाँ घी दूध की नदियां बहती सुनी गई है। इस धरती में इतनी सामर्थ्य होते हुए भी इस धरती के प्यारे पुत्रों की दीनहीन दशा देखकर किसी को भी आश्चर्य होना स्वाभाविक है। यह प्रसन्नता की बात है कि देश करवट ले रहा है और हमें आशा करनी चाहिए कि शीघ्र ही इस व्यवस्था में अमूल परिवर्तन होगा और यह देश पुनः सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा।
1: बचाओ इस धरती को। दोस्तों, ये थी वार्ता श्री पी देवराज कुमार की, जो अभी तक आप सुन रहे थे। आइए, अब प्रस्तुत है लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

0: दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में भजन। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनिए श्रीमती ई बेबी रानी की कहानी, माँ मुझे आने दो।
1: नंदिनी, ओ नंदिनी, अभी तक उठी नहीं? उठो महारानी जी, उठो। कहाँ मर गई हो? गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? सबको मेरी आवाज ही सुनाई देता है, तेरी हरकत नहीं दिख पड़ता है। अरे वसंत की माँ, सुबह हुई, बड़बड़ा रही हो? बहू तो अभी छोटी है, उसके और छोटी बच्ची, रात भर रोती रही, अभी 4 भी नहीं बज गया, थोड़ी देर और सोने दो। हाँ सोने दूं, क्यों नहीं सोने देती? बहू तो अपने मायके से लाए दास दासी है, काम करने को लाया था बड़े घर की बहू को, कौड़े पैसे भी ना लाई, सोने दूं? माँ जी, माँ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी रसोई घर का दरवाजा खोलिए, बर्तन मांझ कर चली जाऊंगी। आ रही हूँ, आ रही हूँ, घर में एक महारानी है, तू तो और एक, आ रही हूँ। सुनो शांताबाई, तू कल से मत आना, अभी तो काम पूरा होने के बाद बाबूजी से कह दूंगी, तुम्हारा हिसाब लेकर जाना। दासी एक मिनट ऐसी ही देखी और कही, माँ जी सिर्फ आज के लिए जल्दी जाना है, बच्चे को थोड़ा बुखार है इसलिए। वो तो ठीक है शांताबाई, कल से तुमको इस घर में काम नहीं, मैं जो कहा ठीक ही कहा, जाओ अपना काम पूरा करके जल्दी जाओ, वरना बाबूजी बाहर जाएंगे। माँ जी, बहू जी तो अभी छोटी बच्ची, बच्ची की माँ भी है, आप अकेले इतने काम कैसे संभालेंगे? मैं क्यों संभालूंगी, अंदर की महारानी है ना, उनके घर से आए दासी लोग संभालेंगे। आई बड़े घर की बेटी, मेरे ऊपर एक बहू नहीं भूत सवार हो रही है। पिछले साल मेरे ननद की बेटे की शादी हुई, लड़की कितनी जेवरात लाई है, धूमधाम से शादी की, खूब पिलाया, मुंह मांगे इनाम दिए, विदाई के वक्त लड़के को गाड़ी वगैरह भी दी, एक साल गिरा ही नहीं, बच्चे को गोद ली है, बहू तो वैसा होना है, मुझे मिला कहीं शैतान। माँ जी, बच्चे तो भगवान की देन है, हमारे हाथ में क्या है? अरे चल, कहने आई बड़ी, चल अपने काम देख ले, दांत मांजते हुए ये सब सुन और देख रहे है घर के मालिक गिरधारी, लेकिन पत्नी से कुछ कह नहीं पा सकते, कहने पर भी पत्नी कुछ सुनती भी नहीं, क्या करें? बेटा और माँ एक कदम पर चलते हैं, भगवान की दया, उनकी मर्जी के अनुसार होगा, मुंह पोंछते हुए अंदर चले जाते हैं। गिरधारी ऊंचे कदम के आदमी है, गांव में सब लोग इज्जत देते हैं, कामी आदमी है, मजदूरों को कष्ट देखते हैं, हिसाब ठीक से देते हैं, लेकिन घर में उनका एक बात भी नहीं चलता। पत्नी जब देखो किसी ना किसी को झिड़कियां देती रहती है, बेटा भी माँ के साथ, उन दोनों का फिक्र तो छोड़ दी, लेकिन बहू नादान, उसके वास्ते ही गिरधारी की चिंता, ये दोनों उनको भून डालेंगे। हे भगवान दया करो। सिर पर ओढ़नी को ठीक करती हुई नंदिनी माँ जी कहकर आती और सास को प्रणाम करती है, आई रानी जी, सुबह हुई अभी? माँ जी,

बच्ची रो रही थी, अभी अभी सोई थी। हाँ, तुम ही माँ बन गई और कोई नहीं बनी, बच्चे की माँ। जा जा नंदिनी, डर के मारे घर के पीछे चली मुंह धोने के लिए। बाहर आकर देखी तो अपने आप को खो गई। कितना सुहावना वातावरण है। उषा सुंदरी पृथ्वी पर उतरने वाली थी, पूरब की ओर लालिमा दिखाई दे रही है। पक्षियों की चहचहाहट से सारा वातावरण में एक चैतन्य का सृजन हो रहा है। नंदिनी के घर में भी कोलाहल हो रहा है। नंदिनी का घर कह भी नहीं सकते, क्योंकि घर के लोग उस घर के सदस्य के रूप में मानते ही नहीं, परवाह भी नहीं करते। 2 साल हुए उसका विवाह होकर, तब वह 15 साल की नादान एक दिन पाठशाला से आ रही थी। घर में पिता के पास और कोई बैठकर बात कर रहे थे। थैली लेकर अंदर जाने वाली नंदिनी को पिता ने बुलाया। बेटी इधर आओ, ये मेरे दोस्त है, नमस्ते बोलो। लज्जा से सिर झुकाकर नमस्ते कहकर अंदर चली गई। गिरी, ये है मेरी बेटी नंदिनी, पीछे और एक है, बेटी के अलावा कुछ दे नहीं सकता, आपकी इच्छा, हाथ जोड़कर राजैया ने कहा। राजैया, आपके घर की बेटी ही मुझे काफी है, तुम्हारी इस अमानत को मैं अपने सिर पर रख लूं। राजैया खुशी से स्वीकार कर ली। इस प्रकार नंदिनी का विवाह हो गया वसंत के साथ। सास को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बेटे का विवाह आसपास के लड़कियों से नहीं हो सकता, लड़की वाले दे ही नहीं सकता, उसके आदत वैसे है, इसीलिए मौन रह गई। दिन बीतते गए। अड़ोस पड़ोस के लोग हो या उसके मन की इच्छा हो या पुरातन भावों से पली हो, कुछ भी हो, नंदिनी को बहू की तरह ही देख रही थी। वह कभी विचार भी नहीं करती कि बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है। माँ जी, चाय लीजिए। नंदिनी आकर चाय का गिलास दे दी। सास हाथ बढ़ाकर चाय का गिलास पकड़ ली और चिल्लाकर छोड़ दी। अरे, कितनी बार कहा, कप में दे दो, इतना गर्म चाय कैसे पीवूं, शैतान कहीं का। माँ जी, कल आपने कहा था कि कप में जल्दी ठंडा हो जाएगा, गिलास में दिया करो, इसीलिए। नंदिनी की बात खत्म हुआ कि नहीं, उसके बाल हाथ में पकड़कर घिस ली। अम्मा कहते हुए बाल को दोनों हाथों से पकड़कर बीचे देखी तो वसंत खींच रहा है। माँ के सामने बोल रही हो, कितने हिम्मत, जा अंदर जाकर चाय लाओ, धकेल कर कहा। नंदिनी आंखें पोंछते हुए अंदर चली गई। इतने में बच्चे की रोने की आवाज आई। जाने के लिए कदम बढ़ाकर भी रुक गई और चाय बनाने में लग गई। फिर आवाज सुनाई नहीं देता, और रो रही है, संभाल, जब ये मरेगी घी के दिया जलाऊंगी। जाकर बच्ची को संभालने लगी, गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। 5 महीने का मासूम, अभी नाम भी नहीं रखा, बच्ची है ना, इसीलिए। जब ये लड़की पैदा हुई तब से उसकी यही दशा थी। नंदिनी को पूरे का पूरा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, अपने घर में भी दोनों लड़कियां हैं, लेकिन पिताजी ऐसे कभी नहीं देखा, कितने लाड़ प्यार करते, इसी वास्ते यहाँ का कोई बात उनको नहीं बताया। बच्ची को सुलाकर फिर रसोई में गई। कुछ चक्कर सा लगा, आज सुबह से ऐसा ही था। नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सब्जी बनाने लगी तो उसे पेट में कुछ गड़बड़ सा लगा, उल्टी की महसूस होने लगी, तो काम छोड़कर पीछे की आंगन में गई। शांताबाई चिल्लाकर बोली, माँ जी, बहू को उल्टी हो रही है, खाना हजम नहीं हुआ हो या फिर बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुस्कुराते हुए पानी लाकर बहू को दे दी। नंदिनी को कुछ पता नहीं हुआ, कैसे अपने कमरे में गई और पलंग पर पड़ गई। जब आंखें खुली तो अपने मोहल्ले के डॉक्टर उसके हाथ पकड़कर बता रहे हैं कि ये माँ बनने वाली है। वसंत और उसकी माँ डॉक्टर को बाहर ले जाकर बहुत देर तक उनसे बातें की और उनको पैसे दिए, फिर कल आने को कहकर अंदर चले गए। अगले दिन सासू माँ की मीठी आवाज, नंदू बेटी उठो, जल्दी मुंह धो लो, तेरे लिए दूध गरम कर ली, चलो चलो जल्दी करो। नंदिनी को कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है, सोचते हुए ठीक है माँ जी कहकर चली गई। मुंह धोकर आई तो दूध का बड़ा गिलास उसके हाथ में रख ली। नंदिनी चुपचाप गिलास लेकर पीने लगी।
नंदू बेटी।

बच्ची को मैं संभालूंगी, जाकर नहा लो, हमें शहर जाना है। बड़े डॉक्टर साहब से तुम्हें परीक्षा ये करवानी है, जल्दी तैयार हो जाओ, तब तक वसंत गाड़ी लेकर आएगा। एक घंटे के अंदर अंदर सब तैयारियां हुई। माँ, बेटे और अपने मोहल्ले के डॉक्टर के साथ नंदिनी को लेकर शहर गए। पहले डॉक्टर से वे तीनों मिलने गए। कुछ बातचीत के बाद नंदिनी को अंदर ले गए। कुछ समय बाद डॉक्टर नंदिनी को फिर बाहर बरामदे में बैठने को कहा। माँ बेटे को बुलाकर कुछ कहा। सुनते ही दोनों का मुंह छिड़ गया। फिर लड़की ना बाबा ना, फिर लड़की ना बाबा ना। वसंत की माँ उठकर डॉक्टर के दोनों हाथ पकड़ ली। डॉक्टर आप ही कुछ कर लीजिए, आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी, हमें बचा लीजिए। अरे माँ जी घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे माँ जी घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या, घबराते हुए बोली, अभी लगता है पांचवा महीना शुरू हुआ, कुछ माँ को हानि हो पूरा हम नहीं बता सकते। होने दो, आपको करना ही है, जितना चाहे मांग ले बस। डॉक्टर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रोगी और वैद्य दोनों दूध चाहा, और क्या चाहिए। ठीक है, परसों रविवार है, उस दिन सवेरे ले आना, कहकर चला गया। माँ बेटे दोनों बाहर आए, नंदिनी से एक बात भी नहीं कही, गाड़ी में जाकर बैठे। उनके मुंह देखकर नंदिनी भी चुपचाप डर के मारे कुछ कहे और पूछे के बिना ही गाड़ी में जाकर बैठ गई। घर जाते ही नंदिनी अपने कमरे में जाकर बेटी को गोद में ले ली, दूध पिलाने लगी, ऐसा ही पढ़कर सो गई। जब आंख खुली तो बहुत भूख लगी। रसोई घर जा रही थी, सास की कुछ आवाज धीमी से सुनाई दे रहा है। बेटा इस बार भी लड़की है तो हम मोहल्ले में सिर उठाकर नहीं रह सकते, बिरादरी में हंसी होगी। तुमको दूसरी शादी करना है या इसे मायके भेजना है, इन सबसे अच्छा यही होगा कि रविवार को ले जाएंगे, एक घंटे में सब कुछ हो जाएगा, नंदिनी को भी कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, कहकर बसंत चला गया। नंदिनी को कुछ कुछ समझ में आ रही है, कुछ दाल में काला है, सोचते हुए खाने के बिना ही अपने कमरे में चली गई। बड़ी देर तक ऐसे ही सोचती रह गई। सोचते सोचते हाथ पेट पर फेर ली। अंदर से अपनी बेटी कह रही है, माँ मुझे आने दो। नंदिनी ऐसी हाथ रखी थी कि बेटी को मानो आश्वासन दे रही हो। उसे कोई खाने के लिए बुलाया भी नहीं। बाबूजी, गिरधारी चौंक कर नींद से उठ गया। क्या बात है नंदू बिटिया, बाबूजी कहकर उसे लपेट कर रोने लगी। गिरधारी उसे स्वांतना देते हुए कहा, रो मत बेटी, क्या हुआ। माँ बेटे कुछ तो नहीं किए, बताओ। तुम्हारे वास्ते मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रुवांसी स्वर में नंदिनी सब कुछ बताया और अपना निर्णय भी बताया। तुम ठीक कह रही हो बेटी, इस जगह मेरे मित्र होता तो वह भी यही कहेगा। अपने मित्र से तुम्हारे बाबूजी की ओर से क्षमा मांगना, मैं सारा इंतजाम करूंगा। चलो बच्ची को ले जाओ, अब यह बच्ची नहीं, इसका नाम उषा है, जाओ जल्दी करो। 10 साल बीत गए। फिर एक उषोदय काल में एक प्रांगण में गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, एक 10 वर्षीय लड़की की आवाज गूंज रही थी। एक पेड़ के नीचे कुछ दूर पर यह प्रार्थना हो रही है। कुछ विद्यार्थी लोग चटाइयों पर बैठे हैं। गेट के पास आकर एक व्यक्ति ये सब देख रहा है। मैले कपड़े, कुछ दाढ़ी बनी है, बहुत कमजोर दिख रहे हैं। बहुत देर से पैदल चलाया होगा, थका हुआ मालूम होता है। ये सब क्या है, ये तो अपने ससुर का घर है, विद्यालय दिख पड़ता है, उस ओर वानप्रस्थ का नाम रखा है, इस ओर वयोजन विद्या केंद्र रखा है, नंदिनी किधर है, क्या कहेगी अब मुझे देखकर। बापूजी अंदर आइए, वही प्रार्थना करने वाली लड़की, आइए बापूजी, आराम से बैठिए। रामलाल इनको पहले कुछ खिला दो, बाद में अम्मा के पास ले जाओ। बेटी आपका नाम क्या है। जी गिरिधारिणी। गिरिधारिणी, चौक कर कहा। हाँ, कहकर हंसती हुई चली गई। बापूजी अम्मा जी बुला रही है, चलिए। सिर झुकाकर अंदर ऑफिस रूम में चला तो

0: वहां संचालिका के रूप में नंदिनी। वसंत कुछ नहीं कहा, नंदिनी ही एक बात कही, मेरे जीवन में आपको स्थान नहीं, लेकिन हमारे वनप्रस्थ में आपको स्थान है। रामलाल, इन्हें ले जाओ।
1: माँ मुझे आने दो। दोस्तों, ये थी कहानी श्रीमती ई बेबी रानी की, जो अभी तक आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का ये हिंदी कार्यक्रम गजरा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में कुछ खास लेकर फिर हम आपके साथ जरूर उपस्थित होंगे। तो श्रोता, तब तक के लिए आपका दोस्त मुश्ताक को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपेक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया, अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय

0: एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
1: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ मानेन। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्रांश पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाइल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून। वी आर होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
0: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तान

0: पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उप कप्तान है। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
1: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
2: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurav Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
2: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi Bhartiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखें ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब हरियाणा के खेल

0: निकल कर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगु में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
1: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगु टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगु प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीतती है और हर मैच में 15-15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगु मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगु में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
0: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपन टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड thereby इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस्ड टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रांग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Srija Kula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
0: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रहीं। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे

0: अरे ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
1: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action में थे इंडिया के लिए और उनका ग्रुप स्टेज मैचेस में पहले मैच में मंगोलिया को हराया कंफर्टेबली। दूसरे मैच में भी जीत मिली आध्या और जय को, उन्होंने हराया कंबोडिया को। मगर जो तीसरा मैच था वो कांटे की टक्कर थी साउथ कोरिया के खिलाफ। उस मैच में हार का सामना करना पड़ा हमारी इंडियन टीम को, मगर हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आध्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
2: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
0: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट

लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines will apply to all upcoming 4- and 6-lane greenfield and brownfield high-speed access-controlled national highways. The guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation of detailed project reports of high-speed national highways corridors. President Draupadi Murmu has arrived on a 3-day visit to Gujarat today. The president will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. Marking a historic shift, the Ministry of Information and Broadcasting takes the nation's highest film honours beyond the capital to celebrate India's cinematic diversity under the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The Chief Electoral Officer of Delhi today held a meeting with the recognised political parties today regarding claims and objection period of Sir 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. The CEO office has published the list of electors who have been issued notices during the special intensive revision of electoral rolls, along with the reasons for issuing the notices. It has clarified that issuance of notice does not mean that the name of an elector will be deleted from the electoral roll. In Asian Games shooting, India has won 3 medals in Aichi, Nagoya, Japan today. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver medal while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver medal in the men's team event of the same competition. The trio of Rudraksh Balasai Patil, Himanshu Dhillon and Perth Rakesh Mani came second in 10-meter air rifle team event. In mixed martial arts, Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60 kg category. In the medal tally, India is currently in 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the medal-winning team. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 5वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। जनसेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में माई गॉव ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक माई गोव पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती

0: करती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया, यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमली जामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
1: जी जी।
2: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है।
1: जी।
2: मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
1: जी।
2: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे उस मुहिम के, वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा।
1: जी,
2: तो जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो, या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना सफल नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिवअप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिवअप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिवअप हो पाएगा जब वो वॉलेंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई, आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के समय में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
1: बिल्कुल।
2: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य है। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
1: जी,
2: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में, एक योजनाओं में, एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: श्रोताओ, यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख में याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014 यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहाँ पर सुरेश जी, हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया?
2: बिल्कुल। देखिए, याद रखिए, आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
1: जी,
2: 2 अक्टूबर
1: जी।
2: और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित करते थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवासी हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था। तो उसी से प्रेरित होके गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होकर हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया, उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र

0: पांच साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा।
1: जी,
0: तो ये सब परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है ये निर्भर भी रहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे एक एक शहर का, अब देखिए इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहां सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक जन आंदोलन के रूप में लोग खुद जो है कूड़ा डालने से उनके अंदर नो प्लास्टिक यूसेज की बात की गई है।
1: जी,
0: तो मैं समझता हूं कि एक जागरूकता
1: जी
0: जनता के अंदर पैदा भी हुई।
1: सुरेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ योजना ना हो बल्कि व्यवहार में परिवर्तन आई। घर के लोग जो कूड़ा गाड़ी आएगी उससे पहले अपने कूड़े को लेकर तैयार खड़े हैं कि गाड़ी आएगी हमें डाल देना, तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा। और ये सफल नेतृत्व का एक स्पष्ट सोच का परिचायक हम मान सकते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा वह गांधी जी की ही भूमिका एक नायक निकल कर आया और उसने उसे जमीन स्तर तक पहुंचा दिया। यहां पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, कार्यक्रम को ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे गिव इट अप अभियान यह अपने आप में कैसा अभियान था, इसके परिणाम क्या निकले हैं। राकेश जी, त्याग की भावना यदि भारतवर्ष की मूल भावना रही है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्यागी कोई भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है भारतीय शास्त्रों में भी और भारतीय जनजीवन में भी। यहाँ पर ये जो गिव इट अप, त्याग अपना कर दीजिए यदि आप सक्षम है, तो इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
2: देखिए, आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि वीडियो कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही विभव कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है। और आम तौर पर जो ये माना जाता था कि गैस सिलेंडर एक स्टेटस सिंबल कभी हुआ करता था, राशनिंग होती थी, काफी मुश्किलों से दिक्कतों से लोगों को गैस सिलेंडर मिल पाता था, और 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घरों में गैस सिलेंडर का पहुंच जाना, आज की तारीख में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपना LPG गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो PNG के इस दौर में, मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, जहां भी घर घर PNG की पाइप बिछ गई है और लोग PNG का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं ही वापस कर रहे हैं। तो एक तो गांव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाते महिलाओं को देखिएगा तो पूरा दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है, और जन भागीदारी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया और इससे एक सामाजिक समरसता भी सहजता भी आई है। और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित पीछे छूट गए हैं, अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी धुआं से आजादी मिले, कि सेहत सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है। और जिसका परिणाम यह है कि आज आप गांव में दृश्य बदल गया है।
0: सुरेश जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना जो, खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं, जो कोयला, जो लकड़ी का इस्तेमाल करके TB जैसे खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होते थे, उनके लिए एक साफ ईंधन प्रदान करने का जो एक पूरा मुहिम था, ताकि महिलाओं के जीवन में भी जो है वो दिन भर पेड़ काट के लाना, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था
1: जी,
0: और उनको इकट्ठा करना दिन भर, फिर शाम को लाकर उनसे खाना तैयार करना, उससे हटकर एक गैस जो पहले सिर्फ शहरों तक एलपीजी की जो एक व्यवस्था थी उसको पहुंचाने का उज्ज्वला योजना

0: योजना का यह तय किया गया। तो इसमें यह भी देखा गया कि बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनको एक तो अफोर्ड कर सकते थे, उनको सब्सिडाइज्ड गैस की जो है आवश्यकता नहीं थी, दूसरा पीएनजी के कनेक्शन शहरों में बड़े तादाद पर जो है कनेक्शन मिल गए, जिसके बाद एलपीजी की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके बाद उनसे

0: चल रहा है तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटरली दे दिया। तो मैं समझता हूं कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा,
1: जी, जी,
0: तब जाके जो है ये होगा।
1: जी, जी,
0: इसी तरीके से राशन कार्ड है, आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं, तो अब ये तभी संभव हो पाएगा। एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था।
1: जी,
0: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिव अप कर दें आज, क्योंकि पीडीएस की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं,
1: जी, जी, जी,
0: कि भाई वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना स्वावलंबी
1: जी,
0: बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी शुरुआत, तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए। इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला, और सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है उनको भी देना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है सरकार इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है सफल हुए हैं।
1: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से, प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूँ मन की बात कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में, तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता, राष्ट्र एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर,
1: बिल्कुल
0: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों की उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आर, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप एक घंटे सुनेंगे, अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी, संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने जामिया मिलिया के साथ मिलकर हमने इसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस किया
1: जी,
0: और पूरा पत्रिका हमने प्रकाशित किया जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है, और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है, बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर, ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आमतौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या
1: जी,
0: मैं समझता हूं वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन, वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूँ न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं समझता हूँ कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है, और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है, शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
1: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य है, भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया, आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है।
2: नहीं, बिल्कुल अनुकरणीय बना।

0: है, आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में, किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं, यह नोटिसेबल है कि मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है, और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय, कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से, लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
1: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन की बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा?
2: देखिए, इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है
1: जी।
2: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था,
1: जी, जी,
2: आज
1: जी।
2: जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है ऐसे कितने प्रोडक्ट जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, सीहोर का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है, तो और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके, तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से, इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है। आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है। तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें इस

0: देश से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रही है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए लोगों का पद्म, सुरेश जी पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था। यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
0: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
1: जी,
0: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
1: जी
0: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति हैं उनको जो है दवा और मरहम करती थी उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनको
1: बिल्कुल।
0: मान्यता देना
1: उनका
0: जाति उनका मजहब उनका भाषा देखकर नहीं उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी।
0: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का
1: जी,
0: मैं
1: जी,
0: समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपल्स पद्मा कहा जाता है।
1: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए राकेश जी सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कहले के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
2: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान रहन सहन रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले दौरान एक कार्यक्रम चलता था अंतर्राज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहाँ जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके खान पान उनके रहन सहन उनके रीति रिवाज उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेते थे। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं और वो भी एक भारतीय हैं। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए यह अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
1: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कह लें कि आह्वान दिया तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल होते दिख रहे।
0: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही सरदार पटेल ने जो है
1: एक किया पूरे भारत
0: वर्ष, पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को

वो भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिए, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वहीं संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल। और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब वे ब्रिक्स के नेता आते हैं